0: आज की तारीख। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे।

0: भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabelo off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charge d'Affaires in New Delhi. Railways Minister Ashwini Vaishnav held a high-level review meeting with senior officials of Indian Railways on the Railway Recruitment Board (RRB) recruitment process. During the meeting yesterday, Mr. Vaishnav emphasized the need for a more transparent, accurate and technology-driven system. He also reviewed the progress made in shifting departmental examinations to computer-based test mode and said that more tablet-based examinations should be introduced to make recruitment faster, efficient and user-friendly. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's Defence Research and Development Laboratory, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasised that strength is essential for peace and that self-reliance

FM रेनबो दिल्ली दा प्रसारण बॉलीवुड ट्रेल्स रिले कीता जाएगा। 12 बजे हिंदी विच खबरां ते 12:05 ते सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों ते 12:10 ते प्रोग्राम होएगा लेट्स रॉक एंड डांस ते दोपहर दी सभा दे विच तुहाडे नाल रहणगे सीमा कटारिया।

मैं अंधले की टेक तेरा नाम कुंदकारा शब्द तुसी सरवन करे सी पाई रणजीत सिंह चंदन ते उना दे रागी जत्थे पासों गायन किता होया ते प्रोग्राम चल रहे अमृत वेला समा 6:34 दा प्रोग्राम दे तहत अगला शब्द सरवन करदे हैं पाई सतविंदर सिंह ते पाई हरविंदर सिंह रागी ते उना दे रागी जत्थे पासों गायन किता होया।

प्रोग्राम चल रहे अमृत वेला ते, अमृत वेला ते तहत आओ सरवण करदे हैं शनि देव जी दी अमृतवाणी आवाज है अनुराधा पौडवाल दी।

कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। एक बार प्यार से पुकारो मेरे प्यारे को, एक बार प्यार से पुकारो मेरे प्यारे को, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। जी बिल्कुल, जिन्हों तुसी दिल नाल प्यार कर दियो, जे तुसी उन्हों दिल नाल याद करो तो फिर देखो तुहाडे सामने बिल्कुल हाजिर होएगा। ते ये गल है जी रब दी उस वाहे गुरु दी उस अल्लाह दी कि असी उन्हां नूं भी अगर प्यार नाल याद करदे हां, दिल नाल याद करदे हां, ते उन्हां दे साकार होण दे विच, उन्हां दे साडे सामने आउण दे विच फिर देर नहीं है। जी साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ते वेरी गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हां जी मैं दीपा छाबड़ा, ते प्रोग्राम लेके आई हां तुहाडे लई सजरी सवेर। जी कहंदे ने हमारी उनकी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज है, उन्हें हम पे नाज है और हमें उन पे नाज है। बिल्कुल श्रोतियों, आकाशवाणी FM बठिंडा नू नाज है अपने प्यारे श्रोतियों ते, ते असी श्रोतियां लई हर रोज कुछ ना कुछ नवा लेके आने हैं। ते आज दिन है शनिवार, शनिवार नू फिर तुहाडे लई

जिसने दर्द नू शब्दा विच रोया। जिस दी कलम ने इश्क नू अग बनाया।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: अपने इमीग्रेशन सेंटर विच दित्तियां जान वालियां सेवावां जिवें स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, सुपर वीजा, वर्क परमिट ते पीआर संबंधी। जेकर तुसी इलाके दे लोकां नूं जाणू करवाउणा चाहुंदे हो तां तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा दे कमर्शियल विभाग दीआं सेवावां लै सकदे हो। साडा संपर्क नंबर है 78 379 63 306। ईमेल आईडी है AIRFM.BTI@gmail.com। संपर्क नंबर एक बार फिर नोट कर लो 78 379 63 306।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहे हैं सजरी सवेर ते। सजरी सवेर दे विच अज सिलसिला है मॉर्निंग क्विज दा। समा 7:10 दा हो चुके है। ते दोस्तों, जिद्दां कि मैं हमेशा तुहानू सारयां नू गुजारिश करदी हां कि उन्हां बच्चयां नू असीं मौका देईए जिहड़े कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी कर रहे हैं, या छोटे बच्चयां नू वी असीं मौका दे सकदे हां, पर जिहड़े बजुर्ग ने जिहड़े 60 साल तों उपर ने, उह किरपा करके फोन ना मिलाओ जी, क्योंकि समा भी वेस्ट हुंदा है ना, तुहाडा भी ते मेरा भी। ते कोशिश करो अपने घर दे बच्चियां नूं तुसी एनकरेज करो कि ओ सानू फोन मिलान। ते दो कॉल्स मैं ये गुजारिश करके कर चुकी हूँ, एक तीजी कॉल मेरे को आई है, ते देख लेने हैं वो कौन ने ते कित्थों ने, कर लेने हैं जी गल उन्हां नाल।
5: हेलो,
6: नमस्कार बहन जी।
5: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे ने?
6: गुरलाल बोल रहा हूं, पिंड माही में गल।
5: गुलाल जी, तुसी अपनी उम्र मैनू दसी, 26-27 साल है ना?
6: हां जी।
5: मैं कहा तुसी उम्र अपनी की दसी मैनू?
6: मेरी हैगी जी उम्र 27 साल दी।
5: 27 साल दी उम्र है, पर ठीक है चलो। ते की करदे हो गुलाल जी?
6: हेलो,
5: हां जी गुलाल जी, की काम कर रहे हो?
4: लो जी, लगदा है गुलाल जी दा संपर्क साडे तो टुट गया, ते किते ना किते मैनू आवाज तो थोड़ी जी उमर उन्हां दी ज्यादा लग रही सी, पर कोई गल नहीं, जदों तुसी फोन मिला लिया, जदों तुसी मैनू उमर अपनी दसी ते फिर क्वेश्चन दा आंसर भी दे ही देंदे। चलो कोई गल नहीं, प्रोग्राम चल रहा जी सजरी सवेर, ते मैं हाँ तुहाडे नाल दीपा छाबड़ा। असी अगले कॉलर दा इंतजार करदे हां, ते उम्मीद करदे हां ओह वाले कॉलर साडे क्विज दे विच हिस्सा लैणगे जिहड़े ऑलरेडी किसी कॉम्पीटिटिव एग्जाम दे विच तैयारी कर रहे ने, ते उन्हां नूं साडे वल्लों शुभकामनावां। ते फिलहाल सुनदे हां हार्डी संधू दी आवाज़ दे विच एह गीत, ते वेट करदे हां अपने अगले कॉलर दी।

0: जी प्रोग्राम सजरी सवेर सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज दे विच एक होर प्यारे जे श्रोता शामिल होए ने देख लेने हैं जी कौन ने। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नाम दस दो बेटा अपना।
1: रमनप्रीत कौर।
0: रमनप्रीत कौर। रमनप्रीत की कर दे हो?
1: मैम गवर्नमेंट की स्टडी कह रही।
0: क्या बात है, नहीं ते तुहानू बहुत बहुत शुभकामनावां साडे वल्लों। उम्मीद कर दिया तुहानू जेड़ा भी तुसी एग्जाम देना चाहने हो उस दे विच खूब तरक्कियां मिलन।
1: हां जी
0: ते जदो तैयारी कर दे हो फिर खांदे पींदे भी वधिया हो ना, डाइट अच्छी लैंदे हो?
1: हां जी हां जी
0: क्योंकि देखो है ना, पढ़ाई ता ही होएगी जे दिमाग वधिया चलेगा, ते दिमाग ता वधिया चलेगा जे तुसी बादाम खाओगे है ना। चलो चलो, ते मैं तुहानू कंफर्टेबल कर रही सी क्योंकि मैं चाहनी हां कि तुसी ना बिना डरे बिना झिझके मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दो ते बन जाओ विनर।
1: हां जी
0: ठीक है, तैयार हो?
1: हां जी हां जी
0: चलो चलो, तुहानू असी पहला क्वेश्चन पूछन लगे हां, तुसी मैनू दसना है। चेस, नॉर्वे दे विच इक चेस कंपटीशन होने 2026 दा, विनर दस देना तुसी। चेस कंपटीशन होने जे होया है रिसेंटली 2026 दा, चेस जानते हो शतरंज?
1: हां जी हां जी
0: ते तुसी उन जिवें कंपीटिटिव एग्जाम दी तैयारी करदे हो ते तुहानू मैनू लगदा है ये क्वेश्चन आंदा होएगा बेटा। नहीं आंदा? चलो कोई गल नहीं। नॉर्वे दे विच जेड़ा हुने चेस कंपटीशन 2026 होया उहदे विनर दा नाम मैं तुहानू दसूंगी रेडियो ते, तो तुसी जरूर सुनियो ते अपने एग्जाम दी एदां ही तैयारी करियो, ते बिल्कुल भी है ना डिप्रेस होने दी जरूरत नहीं। कोई गल नहीं है ना, तुसी क्विज च फोन मिलाया यही बहुत वड्डी गल है। ठीक है बेटा?
1: हाँ जी मैम
0: ठीक है, खुश रहो, तरक्कियां करो बेटा जी। लो जी लो जी, मैडम जी ने इन्नी तैयारी नहीं की थी बच्चे ने कि वह साडे क्वेश्चन का जवाब दे दें, ते पर जरूर असी उन्होंने इस सवाल का जवाब देवांगे। इस सवाल का जवाब है जी आर प्रगनानंदा। हुने जी जेडे नॉर्वे दे विच चैस कंपीटिशन होए है उहदे विच 2026 दे विनर ने जी आर प्रगनानंदा। ते बच्चों अगर तुसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुसी करंट अफेयर्स अखबारां ते साडे जेडे रेडियो दे प्रोग्राम जरूर सुनने ताकि तुहानू सारे क्वेश्चन आंदे होन। ते अगले कॉलर दी असी इंतजार करांगे, पर तद तक सुनांगे खूबसूरत जिहा गीत।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोतियो 13 जून दिन शनिवार शाम 5:30 बजे हफ्तावारी सिलसिला प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत साडा विशा होवेगा अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर ते मैं हाँ थोड़े नाल दीपा छाबड़ा। समा 7 बज के लगभग 26 मिनट हो चुके हैं ते एक श्रोता साडे नाल होर आए ने जी, गल करन देख लेने जी कौन ने।
1: हेलो।
2: हेलो, सत
1: हां जी, सत श्री अकाल।
2: श्री अकाल जी।
1: की हाल चाल?
2: हां जी, वधिया, तुसी दसो। हां
1: मेरे बहुत वधिया, थोड़े नाल गल हो रही है ता होर वधिया हो गया ना।
2: जी,
1: नाम दस दो बेटा अपना।
2: कोमलप्रीत जी।
1: कोमलप्रीत।
2: हां
1: वाह
2: जी,
1: जी वाह, बड़ा प्यारा नाम है ते जिद्दां तुहाडा नाम है ओवें ही तुहाडी सोहणी जी आवाज है, प्यारी जी, मिठी जी। ते
2: हां
1: की
2: जी,
1: करदे हो कोमलप्रीत?
2: बीए करदे हैं जी।
1: बीए करदे हो,
2: हां
1: चलो।
2: जी
1: ते पढ़ाई वधिया लगदी है? वैसे मैं लगदा कुड़ियां नूं वधिया ही लगदी है ना पढ़ाई।
2: हां जी, हां जी, हां
1: वैसे ना मुंडिया नूं भी वधिया लगदी है, कितने मुंडे नाराज ना हो जान।
2: जी,
1: है ना? ते चलो, तुसी मॉर्निंग क्विज दे विच है ना हिस्सा लिया है, ते मैं चाहनी हां कि तुसी विनर बनो। ते थानू मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आसान जे, ठीक है? ते तुसी
2: ठीक है।
1: तैयार
2: हां
1: हो
2: जी,
1: जी? चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, ये तुहाडे रेडियो ते। केड़ा क्वेश्चन है जी? तुसी मैनू दसना है एनवायरमेंट डे, यानी कि वातावरण दिवस, असी कदे कदों मनाने हैं?
2: 5 जून नू जी।
1: क्या बातां ने, क्या बातां ने। लो जी, तुहाडे लई असी ताड़ियां बजा दिने हैं जी। आ लो जी, बज गईयां जी ताड़ियां तुहाडे लई। लो जी, पहली बार तो ताड़ियां बज गईयां, ते मैं चाहनी हां दूजी बार भी बजन बजन गया। चलो चलो, फिर आप तैयारी करते हैं दूजी बार ताड़ियां बजाने दी। हुण तुसी मैनू दस देना है कि जिहड़ा शहर दा पहला नागरिक हुंदा है ना, मेयर।
2: हां जी,
1: मेयर, मेयर सुनिया? मेयर दी सीट हुंदी है एक नगर निगम दे विच, मेयर।
2: हां जी,
1: हां, तुसी मैनू दसना है कि इस बार मेयर कौन बने ने।
2: नहीं पता जी मैनू।
1: क्लू दवा थोड़ा जा, पहले वाले मेयर का नाम पता सी तुहानू, जेड़े पहला सीगे?
2: नहीं जी,
1: ओहो, मैं तो क्लू भी दिता है, तां भी तुसी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिता। पर चलो कोई गल नहीं, अद्धे क विनर तुसी हैगे हो,

0: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੁਇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕੌਣ ਨੇ।
1: ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ,
1: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ
2: ਜੀ? ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਉਮੇਸ਼ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ।
1: ਉਮੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ
2: ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪ?
2: ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਜੋਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।
1: ਅਰੇ ਵਾਹ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਕਿ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਰ।
2: जी कोशिश करते रहते हैं।
1: जी जी, और अपनी जानकारी में वृद्धि कैसे करते हैं?
2: अभी तो जॉब के साथ साथ में जैसे न्यूज सुन लेते हैं, रेडियो से कभी अखबार पढ़ लेते हैं।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे है ना देश की मतलब जो सुरक्षा है ना, सुरक्षा कहेंगे हम, पुलिस वालों की बहुत बड़ी जॉब होती है हमारे को है ना सेफ रखने की, तो आपका
2: जी,
1: बहुत
2: जी।
1: बहुत शुक्रिया, आपको सलाम हमारा। जी, तो आपने मॉर्निंग क्विज में हिस्सा लिया, तो मॉर्निंग क्विज में हम आपसे पूछेंगे दो सवाल, ये आपको ऑलरेडी पता होगा है ना
2: जी।
1: ठीक है, आपने अभी जो पहले मैंने सवाल पूछे सब सुने आपने?
2: सभी तो नहीं सुन पाया मैं, बाकी सुन रहा हूँ बीच बीच में जब भी टाइम मिल रहा है।
1: अच्छा, बीच बीच में सुन रहे हो, चलो कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर आपको आता हो।
2: जी
1: चलिए, आप चेस के बारे में जानते हैं, शतरंज के बारे में?
2: जी।
1: तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक हमारे लिसनर आए थे कि उनसे क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्वे में जो चेस कंपटीशन अभी हुआ है रिसेंटली 2026 के विनर का नाम मैंने उनसे पूछा।

0: तो वो तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, है ना, आर प्रज्ञानंदा जी विनर रहे हैं। अब आपने मुझे ये बता देना कि सबसे यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, सबसे यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन, यंगेस्ट।
1: रमेश रमेश करके कुछ नाम है मैडम। नहीं
0: नहीं, अब आपका नाम उमेश है तो आप रमेश को विनर बना दोगे?
1: बड़ा मैडम, चल धन्यवाद।
0: आपको नहीं

0: नहीं पता मैडम, चलता
1: नहीं। आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, पर आप इसका उत्तर रेडियो पर सुनिए, आपको पता।
2: लो जी, ये आईसी जी उमेश जी, पर इन्हां नूं साडे सवाल दा जवाब नहीं पता सी, पर असी जरूर दसांगे इन्हां नूं इस सवाल दा जवाब। सब तो यंगेस्ट जिहड़े वर्ल्ड चैस चैंपियन ने, ओह ने जी डी गुकेश जी। श्रोतियो, मैं फिर गुजारिश करूंगी कि तुसी लगातार रेडियो दे प्रोग्राम अगर सुनदे हो, तुसी खबरां सुनदे हो, तो ये खबरां अक्सर ही रेडियो ते अखबारां ते आंदियां रहिंदियां, ते तुसी अवेयर रहो, पढ़ते रहो, अपनी जानकारी भी बधाते रहो, तो सुनते रहो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा 101.1 MHz ते। अज इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल है जी दीपा छाबड़ा।
3: प्यारे श्रोतियों, तुहानू दस दईए कि अज शाम 6:30 प्रोग्राम युववाणी तहत तुहानू सैर करवावांगे बठिंडा दे इतिहासिक किले दी, जिस विच असी जाणांगे दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जुड़िया होया इतिहास, अते किस तरह उस वेले दे बठिंडा किले दे गवर्नर अलतूनिया ने रजिया सुल्ताना नू इत्थे कैद करके रखिया। इस किले दे नाल जुड़ियां होईयां इतिहासिक तंदां असी फरोलांगे, सुनना जरूर अज शाम 6:30 प्रोग्राम युववाणी दे तहत एह विशेष प्रोग्राम।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सर्जरी से सिलसिला मॉर्निंग क्विज थे। मॉर्निंग क्विज लगातार श्रोते ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग बजा रहे थे। दीपा नु साह लैण दा मौका भी नहीं दे रहे थे। अगले श्रोता देख लेने हैं जी कौन ने।
1: हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। परवीन
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे ने?
1: लता सिंगला पर नगर बठिंडा तो जी।
0: परवीन लता सिंगला जी, की काम करते हो? सी मेरे मुंह चो निकले से की काम करते हैं। मैंने आया जिहड़ियां लेडीज है वो वैसे बेचारियां बहुत सारे काम करते हैं ना।
1: तुसीं इहनूं पुछदे हो की काम करदी है?
0: अच्छा, मॉर्निंग क्विज दे विच इदां दा क्वेश्चन पुछ के ना विनर बना दो सारिआं नूं।
1: बिल्कुल
0: जी जी परवीन लता जी, पहला तां ना मॉर्निंग क्विज दा सवाल मैं बाद च पुछूंगी। पहला मैनूं दसो कि तुसीं अज मेरी आवाज पछाणी कि नहीं?
1: हांजी हांजी, दीपा साहब मैडम वैसा दो वारी गुड मॉर्निंग, तीन वारी, चार वारी, बार बार गुड मॉर्निंग जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया परवीन लता जी। ते आपां ज्यादा समा नहीं लेंदे, नहीं तो स्रोते किते ए ना सोचन भी परवीन लता ते दीपा आपस च लग गईआं गल्लां गुल्लां मारन, है ना।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
0: ते परवीन लता जी, तुसी दस रहे सी कि तुसी की करदे हो?
1: सर मैं वैसे तो होम मेकर हाँ, बट साडा कोचिंग सेंटर भी है बेटे दे नाल, हेल्प दे वजह मैं
0: जवाब दे के ना विनर बनना। ठीक है
1: मैडम, मैं तुम एक गल पहला पूछ ला।
0: मैनू नहीं पूछना, मैनू हूं मौका दे दो, ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ले चुके हो।
1: ठीक है
0: चलो चलो, हूं तुम मुंह ते रखनी उंगल ते कन्न खोल के मेरा क्वेश्चन सुनना। ठीक है
1: ठीक है जी।
0: हां ते तुसी मैनू दस देना, फिल्मा देखते हो तुसी? धुरंधर फिल्म आई है ना, धुरंधर दे दो, धुरंधर फिल्म सुनिया ना?
1: हां जी हां जी, आहा टीवी ते वेने हुंदे ज्यादा, गाने गुने इहदे आउंदे ही रहिंदे हैगे मैडम ते
0: आउंदे रहिंदे। ते तुसी मैनूं धुरंधर फिल्म दे हीरो दा नाम दस देना जिहड़े फिलहाल ना सुर्खियां च चल रहे है बहुत, पिक्चर करके भी किसी होर कॉन्ट्रोवर्सी करके भी, उहनां दा तुसी नाम दस देना मैनूं।
1: उहनां दा नाम है रणवीर सिंह जी।
0: वाह जी वाह, ते तुहाडे लई ताड़ियां वजा दिंदे आ असीं।
1: थैंक यू जी।
0: परवीन लता जी होम मेकर होने के नाल नाल जानकारी भी रखते हैं।

13 जून दिन शनिवार नू प्रोग्राम च तुहाडी मुलाकात करवावांगे उगे गीतकार अते नावलकार हंस सिंह सोही भगता होरां दे नाल। तुहानू दस दईए कि हंस सिंह सोही भगता होरां दे नाल मुलाकात दा इह तुसी दूजा भाग सुनोगे, सो सुनना जरूर प्रोग्राम सुखन दे वारिस मिति 13 जून दिन शनिवार सवेरे 10:30 बजे।

0: लो जी फटाफट एक कॉलर नू लेने आ लाइन ते देख लेने आ जी कौन ने।
1: हेलो
2: हेलो
1: हां जी कौन जी?
2: सुखजीत कौर जी।
1: सुखजीत कौर, सुखजीत की हाल चाल ने तोड़े?
2: वधिया जी।
1: की कर दे हो बेटा? मेरे तो बहुत वधिया।
2: मैं पढ़ दे हां जी।
1: पढ़ दे हो केड़ी क्लास दे विच? पंजवी दे विच पढ़ दे हो। चलो फटाफट मेरे क्वेश्चन दा आंसर दो। साडा राष्ट्रीय फुल केड़ा है? फ्लावर है ना फुल।
2: कमल जी।
1: कमल जी बिल्कुल जी, कमल ते थोड़े वास्ते ताड़ियां बजन गियां। ते दूजा क्वेश्चन मैं थोनू पूछन लगी हां, साडा जिहड़ा भारत देश है वह कदों आजाद होया सीगा?
2: 1947 में जी।
1: तारीख भी दस दो पुत्तर।
2: 3 जून जी।
1: हां ये तो गलत गल है ना करो। चलो कोई गल नहीं, थोड़े वास्ते मैं ताड़ियां बजाऊंगी, पर यह है जी 15 अगस्त 1947 नूं। ठीक है, तुसी याद रखना जदों पेपर च आया आंसर ते तुसी सही लिखना है। ठीक है, ताड़ियां मैं बजाऊंगी क्योंकि 1947 तुसी सही दस्या। ते सुखजीत बहुत बहुत शुक्रिया तुसी साडे प्रोग्राम दे विच आए, ते विनर 1.5 बने है ना, मैं 2 नहीं कहूंगी क्योंकि 2 क्वेश्चन तुहाडे सही नहीं, थोड़ी जी मिस्टेक तुहाडी हो गई। ठीक है, ते खुश रहो ते कुछ खा लियो अज अपनी पसंद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साडे प्रोग्राम दे विच जुड़न लई सुखजीत।
2: थैंक यू मैम
1: जी।
0: जी दोस्तों ये सन सुखजीत, ते अज बहुत सारे स्रोतियां ने साडे प्रोग्राम दे विच हिस्सा लिता। मैं क्वेश्चन भी तुहानू दस दित्ते केड़े केड़े असी पूछे सी, ते एक क्वेश्चन मैं पूछे सी कि DU वड्डियां यूनिवर्सिटी दे विच जिवें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दे विच असी एडमिशन लेना होवे तां केड़ा एंट्रेंस टेस्ट असी दिंदे आ? ओह हुंदा जी CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ते इस तों इलावा हुणे जिहड़े बच्चे नाल असी गल कीती उस तों असी पुछिया सी कि भारत कदों आजाद होया? भारत आजाद होया जी 15 अगस्त 1947 दे विच, ते साडा राष्ट्रीय फुल, साडा नैशनल फ्लावर हैगा जी कमल। ते प्रोग्राम दे विच अज थोड़ी जी डिस्टर्बेंस रही, पर फिर भी बहुत सारे श्रोता साडे नाल जुड़े, उहदे विचों सब तो पहले श्रोता साडे विनर भी बने, होर भी बहुत सारे विनर बने। ते मैं नाम फटाफट शामिल कर दिया जी। नीलम जी कोटफत्ता तो आए सन, उस तो बाद अमनप्रीत ने हिस्सा लिता सी, कोमलप्रीत ने भी हिस्सा लिता सी, परवीन लता सिंगला ने हिस्सा लिता सी, उमेश जी ने भी अज साडे प्रोग्राम दे विच हिस्सा लिता, ते नाल

हिस्सा लेता जी? राजवीर, सॉरी, राजवीर जी ने हिस्सा लेता सी तो उस तो अलावा सुखजीत कौर ने। तो इन्हें सब नू बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि साढ़े प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेना ही, विनर बनना है। तो ऐसे तरह बच्चों तुसी प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेना है, तो डरना नहीं। सवाल कदे कदे आ भी जाते, कदे नहीं भी आते, तो जिंदगी दे विच सब कुछ चलता रहिंदा है ना। कदे सफलता कदे असफलता, पर कदे निराश नहीं होना, खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है, मस्त रहना है, तो सुनते रहना है आकाशवाणी FM बठिंडा। तो हुण मैनू दीपा छाबड़ा नू प्रोग्राम सर्जरी सवेर इत्थे ही खत्म करन दी देओ आ गया। धन्नवाद साडी तकनीकी टीम दा ते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा।

आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से समा इस वेले 7:59 मिनट ते 33 सेकंड दा ठीक 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां, समाचार प्रभात 8:15 मिनट ते अंग्रेजी विच खबरां, मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों ते 8:30 बजे पंजाबी विच खबरां सुनोगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे।

0: नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों

0: के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की

0: खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
4: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and

0: फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे ते रवाना होणगे। डीआरडीओ ने बहुपदरी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा समर्था दा विखाला करदे होए लगातार 3 सफल परीक्षण कीते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर ते हमले दे विरोध च अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाल सख्त विरोध जताया। हमले च 3 भारतीय नाविकां दी मौत होई है। भारत अते बांग्लादेश ने सरहद ते शांति स्थिरता ते सद्भावना बनाए रखने लिए अपने वचनबद्धता प्रगट कीती है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 8:40 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।

जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हां जी। मैं दीपा छाबड़ा ते प्रोग्राम दा नाम है जी महक पंजाब दी। तेरे इश्क से मिली है मेरे वजूद को ये शोहरत, तेरे इश्क से मिली है मेरे वजूद को ये शोहरत, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी दास्तां से पहले। जी दोस्तों, अपने देश नू, अपने रब नू असी प्यार करिए, उदा सत्कार करिए, देश नू साफ सुथरा रखिए। फिलहाल आज महक पंजाब दी दे विच तुहाडे लई मैं देश भगति भरे गीत लैके आई हाँ। तो आओ जी प्रोग्राम का कर लैने जी आगाज इस खूबसूरत जे गीत दे नाल, जिस विच आवाज़ा ने मुकेश ते साथियां दियां।

0: रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। विशाल भारद्वाज की आवाज में गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बेख्याल हो
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे पालोमी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खानपान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खानपान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: धन्य जवानी थी, धन्य वो उनकी जवानी जो

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया।

0: और कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

विशेष प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहां उन्होंने आंध्रयन चिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: तनन, तनन, तनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: योग एक जीवन दर्शन है जो सानू संतुलन संजम ते चेतना दे नाल जीना सिखाउंदा है। सानू दसदा है कि असली ताकत सिर्फ मजबूत मांसपेशियां विच ही नहीं हुंदी बल्कि शांत मन ते दृढ़ इरादियां च भी हुंदी है। सो योग साडी काम करन दी समर्था नू कई गुणा वधा सकदा है। दुनिया भर दे लखां कामकाजी ते बेहद व्यस्त लोग भी योग नू जीवन दा अहम हिस्सा बनाउंदे होए जी रहे ने ते कई गुणा ज्यादा ऊर्जा दे नाल ते चंगी सेहत नाल जीवन बिता रहे ने। सिर्फ कुछ पलां दा ही योग अभ्यास सानू बेहतर बना सकदा है। लोड़ है तां बस कदम चुकण दी। एक कदम चंगी सेहत वल, एक कदम बेहतर तन मन वल, एक कदम योग वल।
1: हुणे तुसीं कामकाजी लोकां लई योग इस विशे दे उत्ते विनोद कुमार योग माहर नाल कीती मुलाकात सुन रही सी। इन्हां नाल मुलाकात कीती पूनम राणी ने। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल नाल आकाशवाणी दे पटियाला बठिंडा अते लुधियाना केंद्रां तों वी इस प्रोग्राम दा प्रसारण नालों नाल कीता गया।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन बोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: क्या बात सोही साहब, उम्दा। तुसी बहुत वधिया गाउंदे हो, कदे तुसी कमर्शियल तौर ते गायकी दे विच अपना करियर बनाउण बारे भी सोचिया? ते जे सोचिया तां फिर इस नूं तुसी अगे व्यापारक पद्धर तक क्यों नहीं वधाया, क्यों नहीं लैके गए?
1: सर मैं कोशिश कीती सीगी
0: जी,
1: क्योंकि मैं दिलशाद अख्तर जी नाल भी स्टेजां लाइयां जी
0: जी,
1: और नछत्र छत्ता जी ने जेड़ा गीत गाया सी ना मंदड़े बोल ना बोल, वो मैं कॉलेज स्टेजां ते गाउंदा रहा जी,
0: जी
1: और
0: जी,
1: मैं गजल गीत दे विचों उस गीत चों फर्स्ट आउंदा रहा जी।
0: क्या बात है,
1: गुरबख्शल बिल्ला जी दे नाल रहा जी, उन्हां नाल रह के सेरे गाए, सिक्ख्यावां गाईयां, पर मैं एजुकेशन नूं नहीं छड्डिया जी,
0: जी
1: सिक्ख्या नूं नहीं छड सकिया मैं
0: जी,
1: और मैं लगातार जिहड़ा एजुकेशन नाल जुड़िया रहा तां शायद मैं इस मुकाम ते पहुंच गया।
0: बिलकुल, ते तुसी एजुकेशन नाल जुड़ के अपने शागिर्द अपने विद्यार्थियों तक यह साहित्य दियां बहुत सारियां विधावां जड़ियां है, क्योंकि संगीत साहित्य दा ही एक विधा दे तौर ते असीं मन के चलदे हां, तुसीं पहुंचाया ते हुण भी पहुंचा रहे हो। नावल तुसीं पंजाबी जगत दी झोली हुण पा दित्ता हैगा, बहुत तुहाडियां कोशिशां ने। खेड जगत दे विच वी तुसीं मल्लां मारियां, खेडां जड़ियां ने उह किवें इक साहित्यकार दी, इक अध्यापक दी, इक एजुकेशनिस्ट दी शख्सियत नूं सुधारदियां ने, इस दा जिक्र करो जी।
1: सर ग्राउंड जेड़ा है ना सानू बहुत कुछ दिंदा है, ग्राउंड सानू पेशेंस सिखाउंदा जी,
0: जी
1: ग्राउंड सानू फिजिकल फिट रखदा जी, ग्राउंड सानू उत्थे बैठ के जदों गेम खत्म हुंदी हैगा तां बैठ के उत्थे गाना गीत गाउणे बजाउ हसना, मतलब कि हर तरह की जिहड़ी प्रैक्टिस हैगी ग्राउंड दे विच हो जांदी हैगी है, तां जिहड़ी किसे तरह की कोई भी गेम हैगी है उह साडी जिंदगी नूं बड़ा निखारदी हैगी है, क्योंकि जिन्ना कुछ ग्राउंड सानू दे सकदा हैगा स्पोर्ट्स दे सकदा हैगा, क्योंकि जे फिजिकल फिट रहना गा सर मेरे ख्याल मैं 61 मेरा 61वां साल चल रहा हैगा जी,
0: जी।
1: ते मैं जेड़ा हैगा फिट है जी।
0: बिल्कुल, असीं वेख रहे हां माशाल्लाह तुसीं तंदरुस्त हो, इस तरह तंदरुस्त रहो ते तुसीं लम्मी उम्र जिहड़ी आ माणो, क्योंकि असीं तुहाडे तों होर नावल जिहड़े आ ओह एक्सपैक्ट कर रहे हां। ते इस वेले फिर तुसीं किहड़ी तैयारी च हो, अगे तुहाडियां साहित नूं लैके कड़ियां योजनावां ने, किस तरह दे नावल जां किस तरह दियां होर विधावां दे विच साडे कोल तुहाडियां किरतां आउणगियां?
1: मनदीप सर कई जिहड़े विशे है ना उन्हां नूं नहीं छोया गया
0: जी,
1: मेरा एक नावल जिहड़ा हैगा उह मैं लिख रहा कंटीन्यूटी च हैगा हुण मैं एट ए टाइम।
0: हां जी,
1: उह नावल मैं एक अनपढ़ परिवार दे विचों एक फौजी भर्ती हो जांदा हैगा
0: जी,
1: मैं उन्हां दे उस तीन भरावां नूं उहदे च संघर्ष करदा दिखाया जी।
0: ठीक है जी,
1: अखीर नूं संघर्ष तों बाद घर दे विच कोई इहो जिहा परिवार जी आ जांदा हैगा जिहड़ा अगे जा के जिहड़ा हैगा उस परिवार नूं तहस नहस करन दी कोशिश करेगा
0: जी।
1: मैं उहदे विच मतलब कि भी 70 दे दहाके तों लै के ते 98 कारगिल दी लड़ाई तक दा जिहड़ा हैगा उह सारा उहदे विच जिहड़ा हैगा, हरी क्रांति दा भी हैगा उहदे विच, 1971 दी पाकिस्तान भारत दी जंग दा भी वेरवा हैगा, 78 दे विच निरंकारी कांड जो होया सी उहदा भी हैगा, 84 दा जिहड़ा हैगा उहदा भी हैगा जी, 88 दे हड़ां दा भी हैगा जी, तां इह सारा कुछ जिहड़ा उह दौर सीगा जी, अतवाद दा दौर सीगा जां खाड़कूवाद दा दौर सीगा, मैं उस नूं भी विच लपेटिया जी,
0: जी।
1: ते उस मिलटरी वाले एक फौजी सीगा जी, हरपाल फौजी खाड़कू बन गया सीगा जिहड़ा बैरक छड्ड के आया सी, उस नूं किसे ने नहीं सांभिया सीगा, इस तरह दे जिहड़े दुखांतक पात्र भी मैं उहदे विच जिहड़े हैगे पाउण दी कोशिश कीती हैगी
0: जी। सोही साहब, तुसीं अपने उस नावल दा जिहड़ा जिक्र कीता है उहदे च वी तुसीं बीते समय दी बीते वेले दी गल कीती है, रिश्ते फरिश्ते दे विच वी तुसी 80 दे दहाके दी गल कर रहे हो, तुहानू नहीं लगदा कि मौजूदा समय दे विच जो चैलेंज जो चुनौतियां सानू ने साडे साहित नू जो चुनौतियां ने मौजूदा समय च अजिहे नू लैके भी कोई किरत जिहड़ी है उह सोची जावे घड़ी जावे, जेकर तुसी अजिहा सोचदे हो तां उह किहड़ियां चुनौतियां मौजूदा समय दीआं होणगीआं जिन्हां नू ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਚ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ?
1: ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ

0: ले।
1: जी बिल्कुल श्रोते हो, असि अपने दोस्तां दे नाल मिलदे वी आ ते बिछड़दे वी आ, पर मिल के जुदा होना ते उस तो बाद जो मिलन दी खुशी हुंदी है ना, खूबसूरत एहसास हुंदा है। सो एक बारी फिर खूबसूरत एहसास लेके मैं विजय लक्ष्मी श्रोतिया दी खिदमत विच हाजिर हुई हां। तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम पैगाम लेके इस बार दा पैगाम प्रोग्राम पेश करांगी मैं विजय लक्ष्मी, ते मेरे नाल सतपाल ब्राड जी। मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। पैगाम तुसी भेज सकदे हो 7173 73 146 ते, और प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भुला, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। ला ला ला।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री

वर्ल्ड फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए।
2: बॉलीवुड की

0: चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जी हाँ, यह है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम बातें करते हैं ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई, और आज भी बातें होंगी बॉलीवुड की। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो बने रहिएगा एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ठीक 12 बजे तक।
1: यूपी वाला ठुमका लगाओ,
0: लगाइए लगाइए यूपी वाला ठुमका।

जी हाँ दोस्तों, यही शर्त कि जो जिस स्टेट से आता है उसको उस राज्य के डांस करके दिखाना होगा। जी हाँ, ये शर्त रखी थी किसने? पार्श्व गायक मीका ने बुधवार को, जब वो अपना 50वां जन्मदिन मुंबई में बड़े धूमधाम से मनाने के लिए अपने खास दोस्तों को इनवाइट कर रहे थे। सोनू निगम आए और उन्होंने हर घड़ी बदल रही गीत भी गाया और भंगड़ा डांस भी किया। वहीं कपिल शर्मा ने भी ठुमका लगाया अपनी पत्नी गिनी के साथ, तो गुरदास मान, शंकर महादेवन, उषा उत्थुप ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर रंग जमाया। और जब इतने महारथी एक साथ जमा हो ना, तो रंग तो जमना ही था। वैसे कुछ ऐसा ही रंग जमाया दिल्ली में कई कल प्राइड मंथ फेस्टिवल ने, जहां एनएसडी के कलाकारों ने रंग जमाया प्ले बदसूरत कॉमेडी रोस्टर दिल्ली शो के माध्यम से। अब सोचने वाली बात है कि दिल्ली हो या मुंबई, जब रंग चढ़ा है मस्ती का, तो अपन भी गीत संगीत के माध्यम से अपने मूड को फ्रेश करते हैं और आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आज का वो सवाल जिसका सही जवाब, और सबसे पहले सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आज आपको बताना है कि मीका ने बॉलीवुड में पहला गीत कौन सा गाया था। जी हाँ, सवाल बहुत आसान है, अगर कठिन लग रहा है तो उसके लिए मैं आसान कर दूंगा। जी हाँ, सवाल के लिए आपको तीन ऑप्शन भी आज दे दूंगा। सवाल थोड़ा कठिन क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है। पहला ऑप्शन है, जो पहला गीत उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाया था, वो था ऑप्शन ए सावन में लग गई आग, बी था दिल में बजी गिटार, और सी था मौजा ही मौजा। 9868107070 पर भेजिए मैसेज और बताइए मीका ने हिंदी फिल्म में पहला गीत कौन सा गाया था, या यूं कह सकते हैं कि उनका डेब्यू गीत फिल्मों के लिए कौन सा था। 9868107070 पर भेजिए सही जवाब।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:16:50। दोस्तों कल 12 जून को बॉक्स ऑफिस पर वैसे तो कई फिल्में रिलीज हुई हैं। अगर हम बॉलीवुड हॉलीवुड और रीजनल सबकी बात करें तो लगभग 20 फिल्में ऐसी रिलीज हुई हैं, लेकिन हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे चार फिल्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म मैं वापस आऊंगा। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता, विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3D और मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर की। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैं वापस आऊंगा की। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि इम्तियाज अली जब भी फिल्म बनाते हैं ना, तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक एहसास बन जाती है ना, और ये फिल्म भी एक एहसास है, भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी के बीच जन्म लेने वाली यादों की। नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना, दानिश पंडोर, मनीष चौधरी, रजत कपूर और अंजना सुखानी का अभिनय और इम्तियाज अली जी का निर्देशन दर्शकों को कितना अपनी ओर आकर्षित करता है इस फिल्म को देखने के लिए, आइए बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली जी, जो हमारे साथ बिल्कुल लाइव मौजूद है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हेलो
1: हेलो
0: इम्तियाज जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सबसे पहले आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अच्छा इम्तियाज जी, आपने रॉकस्टार, तमाशा, हाईवे, जब वी मेट में हमेशा पर्सनल प्यार दिखाया, लेकिन इस फिल्म में लव के साथ साथ बंटवारे का दर्द भी आपने शामिल कर दिया, ये शिफ्ट क्यों?
1: ये शिफ्ट नहीं है, ये भी एक पर्सनल प्यार है जो बंटवारे के समय में होता है। तो किस तरह से बंटवारे की वजह से एक पर्सनल प्यार वो किस रास्ते से गुजरता है, देश के बंटवारे और समाज में जो चीजें खराब हुई थी उसमें एक दिल भी टूटा था, सिर्फ घर ही नहीं टूटे थे। कहानी ये है।
0: अच्छा।
1: बहुत कुछ जो लेकर के लोग दूसरी तरफ से इस तरफ आए थे उसमें से कुछ यादें भी थी, वापस जाने की इच्छा भी थी, और इन्हीं ये एक पर्सनल स्टोरी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आउट फोकस में आपको पार्टीशन का दृश्य दिखता है। और मुझे लगा कि माइग्रेशन जो है ये हमारे इस युग का सबसे बड़ी कथा है, और पार्टीशन मुझे लगता है कि इस हमारे सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इवेंट है जिस पर हमेशा जब भी नजर डाली गई है ना तो एक बहुत ही गुस्से से डाली गई है। मगर जब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात किया जो पार्टीशन सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा है और कुछ उनमें से अब भी हमारे साथ हैं, तो मैंने देखा कि वो अपनी पुरानी प्यार भरी यादों से भी ओतप्रोत हैं। अभी अगर उन्हें बहुत सारे मेमोरी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजों को वो भूल चुके हैं, मगर जो उनकी छोटी बचपन की और जवानी की जो मधुर यादें थी वो अब भी उनके साथ हैं, तो मेरी कहानी उस पर आधारित है।
0: अच्छा नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने 95 साल के व्यक्ति का जबरदस्त रोल निभाया आपकी इस फिल्म में, कितना मुश्किल रहा आपके लिए उस सिचुएशन में डायरेक्ट करना जब कैरेक्टर डिमेंशिया में है और मेमोरी में यंग है?
1: जी बड़ा मजा आया, काफी मुश्किल था नसीर के लिए, क्योंकि क्या होता है कि भूल जाने की एक्टिंग करने में कभी कभी इंसान खुद भी डायलॉग भूल भी सकता है, जो हमने ये देखा। और काफी मुश्किल था क्योंकि वो जो मेकअप करके बिस्तर पे रहना और पुरानी यादों में डूबे रहना, सामने वाले लोगों को नहीं पहचानना, इसमें मुश्किल भी था और एक नई लेयर भी खुली कि इंसान के जो मन के अंदर चित्र चलते हैं और जो उसकी

0: ध्रुव के सामने चित्र चाहते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? तो मेरे ख्याल से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मसीह ने ये काम किया और बहुत खुश हूं कि लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की है फिल्म में।
1: अच्छा, फिल्म रिलीज हो चुकी है, कल थिएटर्स में पहुंच चुकी है, फिल्म की यूएसपी क्या है और क्यों लोग आपकी ये फिल्म देखें?
0: पुराने जमाने का प्यार क्या हमें इस नए वक्त में नहीं मिल पाएगा? क्या वो जमाना अलग था? क्या वो प्रेमी किसी दूसरे फैक्ट्री में बनते थे? हम अलग हैं, हम जो आज के युग में जी रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे साधन है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस है हमारे पास, हम क्यों लोनली हैं? हम क्यों तन्हा हैं? क्या क्यों हमें ऐसा लगता है कि अभी हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और अकेले हैं? तो ये पुराने जमाने का प्यार जो दर्शाया गया है, जो 1947 के वक्त की मोहब्बत है, जिसे आज के वक्त का दलजीत दोसांझ देख रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जिंदगी भी उस तरह से बन जाए जैसी उनके दादाजी की थी, उनकी कमिटमेंट भी उसी तरह की हो कि 78 इयर्स तक वो एक लड़की की छवि अपने दिल में रखें और उन्हें आत्मज्ञानी होती है कि मैं क्यों कि 70 दिन भी किसी भी एक जगह पे अडिग नहीं रह पाता हूँ। तो ये एक बात है जो और फिर उन्हें ये भी लगता है कि देखिए, मेरे दादाजी के पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा था, जबरदस्ती निकाला गया था, मैं क्यों अपना मुल्क, अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ करके जा रहा हूँ, खुद को देश निकाला क्यों दे रहा हूँ मैं?
1: ओके, अच्छा, इसीलिए आपने अपनी फिल्म का टाइटल रखा मैं वापस आऊंगा।
0: ये मैं वापस आऊंगा दोनों पे वैलिड है। हर एक इंसान जो अपना घर छोड़ करके बंटवारे के वक्त आया था, ये सोच करके नहीं आया था कि मैं कभी नहीं आऊंगा वापस, वो हमेशा यही सोच करके आया था कि मैं वापस आऊंगा, और अक्सर वो लोग वापस नहीं जा पाए। तो आज का जो यूथ है, जो बाहर की तरफ रुख कर रहा है, उनमें से एक बंदा हमने दिखाया है जिसका नाम निर्भय गरेवाल है, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ, वो भी ये प्रण कर लेता है इस कहानी को देखने के बाद कि मैं वापस आऊंगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी हुई है, बहुत अच्छा लगा है, और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आकाशवाणी ने 8 जून को 90 साल पूरे किए हैं।
0: बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो,
1: क्योंकि आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना संबंध रहा है सर।
0: जी, मैं बहुत रेडियो का इंसान हूँ और आकाशवाणी ही था जब मैं पैदा हुआ था। कई साल तो मैंने आप ही के रेडियो पर गाने सुने, कई कई गाने जो मैंने एक ही बार सुने हैं या पहली बार सुने थे, वो आपके चैनल पर ही सुने थे। तो मैं तो फैन हूँ आकाशवाणी का।
1: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। चलते चलते पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जब भी टीवी खोलते हैं तो आपको कुछ खराब न्यूज देखने को जरूर मिल जाती है, और हम हमेशा कहते हैं कि चीजें बहुत खराब हैं, मगर इसको अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है कि हम ही लोगों को करना है। ये वक्त है कि हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छाई की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कंप्लेन करने से नहीं, थोड़ा सा चेंज करने से शायद पूरी दुनिया चेंज हो सकती है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा इतना बेशकीमती समय दिया अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, ये थे मशहूर डायरेक्टर राइटर इम्तियाज अली जी, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातें। अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो आइए जल्दी से इसी फिल्म के कुछ डायलॉग सुन लेते हैं, फिर आप निर्णय लीजिएगा कि इस फिल्म को देखने जाना है या नहीं।
2: हाँ जी,
3: वो भी मार्स का है, मार्शल।
4: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
5: मॉडर्न के उस साइड।

0: कहाँ है मैच?
1: चांद पे
0: मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है।
1: मून
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलोन मस्क कर रहे हैं ट्राई, वो बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।

0: जा यहाँ से।
1: मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता।
2: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
3: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
4: समझ में कैसे आएंगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। वो
2: नहीं।
5: ये हो सकता है, ये प्यार जहर की तरह होता है पता। इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।

0: रहेंगे।
1: दोस्तों भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, ये प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं मस्कारा और ये गीत हमने लिया है मैं वापस आऊंगा फिल्म से। अभी हम बात करेंगे भारत भाग विधाता की भी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे 11:30 से 11:47 तक आप सुनेंगे स्टंप प्रोग्राम, उसके बाद हम बात करेंगे भारत भाग विधाता की भी और भी फिल्मों की। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: team or the women's team carry about themselves. So I wouldn't be surprised if they go on to script a few upsets and make it to the semi.
1: Listen, Anisha, we're so excited about it and look forward to working with you during the tournament as well.
0: Likewise.
1: Anisha Ghosh, a cricket journalist, talking about the T20 Women's World Cup happening here in England. Well, that's all we've got time for on this week's Stumped on Akashvani with me, Eleanor Aldroyd. Don't forget, you can follow us on X. We are at BBC WS Sport and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube too. Go to BBC World Service YouTube. My thanks to Charu Sharma and to Jim Maxwell and to all of you for listening. We'll speak to you soon. Goodbye.
2: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akashvani.
3: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hain FM Rainbow.
4: मुझे कुछ जल्दी भेजना है कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या
5: अरे बिल्कुल इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी ओहो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा हाँ भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in
6: ये मेरा छोटा भाई है ना बड़ा शरारती है कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है सोलर पैनल है ना मैंने कहा ओ ये सही है बेटा
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
8: हर घर सूर्य घर
9: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है
10: स्टेज आ गया है दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं ये हौसलों की उड़ान है
9: मतलब सिंगिंग डांसिंग थिएटर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा
10: बिल्कुल डिजिटल आर्ट विजुअल डिजाइन स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा
9: और विनर्स को क्या मिलेगा
10: कैश प्राइजेस फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए
9: दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान रजिस्टर करें आज ही
11: www.delhitalenthunt.com कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से
12: यादें अतीत से बातें बस दिल से क्योंकि आपकी याद आती रही रेनबो पर रात 9 बजे
13: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
14: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या
5: अरे बिल्कुल इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी ओहो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा
9: हाँ भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
15: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
16: शी वॉज अ नर्स ऑन ड्यूटी एट मुंबई से काबा हॉस्पिटल
17: अरे आई एकदम बाप पे गई है
18: पक्का ना DNA टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं
19: बैग नंबर 12 आज आम पकने वाला है
20: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही
21: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग है ना
22: दवाई खाया
23: डॉक्टर को बुलाओ पहले सिस्टर से बात ही नहीं करने का मेरे
24: आपला मुर्गा बीमार है तुमको पूरा मुंबई के बच्चों का पड़ी
25: जब घर वालों को ही रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा
26: बाय बाय
27: अरे सब जगह टेरिस अटैक हो रहा है तू निकल अभी क्या अभी
28: यहाँ पे तो ज्यादा कर भी प्रेग्नेंट लेडीज है या नहीं आएंगे ना

0: सीएसटी से लोग भाग भाग के अपनी तरह आ रहे हैं, उधर स्टैंपेड वैम्पेड हो जाएगा, कोई अथॉरिटी वाला उधर रहेगा तो लोग शांत हो जाएंगे।
1: प्रोसीजर यानी प्रोटोकॉल फॉलो करो।
0: टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है? हॉस्पिटल का दरवाजा कभी बंद होता है क्या?
2: राधा देवशाला बंद थी क्या तू?
0: हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे,
3: जो भी सांस ले रहे हैं उसको हम बचाएंगे।
0: ब्लीडिंग चालू हो गया, लेबर वार्ड में लेके जाना पड़ेगा।
2: बाहर टेररिस्ट है, गोली मार देंगे।
0: सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्य को करने की शपथ लेती हूँ।
4: जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 2008 की वो रात भारत शायद कभी नहीं भूल पाएगा, जब मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आतंकियों ने एक साथ शहर के कई हिस्सों को निशाना बनाया था। इनमें ताजमहल, पैलेस होटल, ओबरॉय, ट्राइटेंड होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल जैसी जगह मौजूद थी। इस घटना पर पहले भी कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी, लेकिन ज्यादातर कहानियां पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स या आतंकवादियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से इर्द गिर्द घूमती रही है। भारत भाग्य विधाता, जिसका भी आपने डायलॉग सुना, कल रिलीज हुई है और यहां थोड़ा अलग रास्ता चुना जाता है, दिखाया जाता है। यह फिल्म उन नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों की कहानी दिखाती है जिसमें उस रात अपनी जान की चिंता किए बिना मरीजों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया था। फिल्म का यही पहलू शुरुआत से दिलचस्प लगता है। हालांकि विषय मजबूत होने के बावजूद फिल्म में हर जगह वैसा असर नहीं छोड़ पाती जैसे कि उम्मीद की जाती है। इस फिल्म में जैसे कि आपने आवाज से पहचान ली होगी कि कंगना रनौत हैं, गिरिजा उके हैं, स्मिता तांबे हैं, आशा शेलार है, प्रिया अर्जुन बेर्दे हैं, जाहिद खान हैं और सुहिता खट्टे हैं। और इस फिल्म को लिखा है मनोज तापड़िया ने और निर्देशक भी वही है मनोज तापड़िया। और निर्माता की अगर बात करें तो कंगना रनौत, शैलेश आर सिंह, धवल गड्ढा, बबीता शिवाल। और ये कल रिलीज हो चुकी है और फिल्म को ज्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है। बहरहाल आने वाले समय में देखना होगा कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर पाती है या नहीं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और अब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे आज के बॉलीवुड सरताज, तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैसेज भेजना था। हमने आज आपसे पूछा था कि मीका का फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए डेब्यू सॉन्ग कौन सा है, और हमने इसीलिए तीन ऑप्शन भी दिए थे और आप उसी तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। पहला ऑप्शन दिया था सावन में लग गई आग, दूसरा हमने दिया था कौन सा गीत हमने दिया था, देखिए मैं ही भूल गया जो कि सही जवाब है, और सही जवाब दिया है मोहम्मद सरफराज आलम ने। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसमें हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए, लेकिन सब ने यही गड़बड़ कर दी कि उन्होंने एल्बम का के बारे में बता दिया कि पहला एल्बम जो उनका आया था सावन में लग गई आग उसके लिए बता दिया, लेकिन सही जवाब है 2006 की फिल्म अपना सपना मनी मनी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरफराज आलम जी, हाँ दर्शना बाजार से, अरड़िया से। हेलो
1: जी, हेलो।
0: हाँ नमस्कार सरफराज जी, कहाँ चले गए आप?
1: नमस्कार नमस्कार, मैं मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से।
0: जी
1: और सबसे पहले आकाशवाणी

0: रेडियो को 90 वर्ष पूर्ण होने पर
1: जी।
0: सभी आरजे, सभी अधिकारी, पैक्स महोदय और जितने भी टेक्निकल टीम है सबको हार्दिक बधाई
1: जी। अब आगे भी बोल दो, मैं क्या सवाल पूछूं आपसे?
0: आपने जवाब बता दिया, जो जवाब मैंने लिखा आपने बता दिया, अपना सपना मनी में।
1: जी बिल्कुल सही कहा। आपको कैसे पता था, ये फिल्म देखी आपने?
0: नहीं, ये फिल्म तो देखी नहीं, लेकिन आपसे ही जानकारी मिलती है। अब जरूर देखूंगा ये फिल्म, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में सारा जानकारी मिलती है।
1: जी बहुत अच्छा लगा सरफराज जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते कुछ और कहना चाहोगे? देखो आज मौका दे रहा हूं मैं,
0: आरजे ओपी राठौड़ जी जहां भी है जल्दी आ जाए एफएम रेनबो पे।
1: ओपी जी का इंतजार हर कोई कर रहा है, और आपका ही आवाज, उनकी आवाज तो हर घंटे सुनते हो ना आप, सुन रहे हैं है ना, सुनते हो ना ऐसे?
0: हाँ,
1: जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, बस संतोष के साथ रखो संतोष। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मोहम्मद सरफराज आलम, आपने बॉलीवुड सरताज बने, आपने सही जवाब दिया था। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी पर छोड़े जा रहा हूँ, और सरफराज अगर अपनी पसंद का गीत सुनना है ना, तो 1:05 पर हमारे साथ सभी लिसनर्स आप जुड़ जाइएगा, सरफराज भी जुड़ेंगे और हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि मेरा वाला सॉन्ग है वो कार्यक्रम जिसमें हम आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं 9868107070 पर। तो अभी फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे विदा, 1:05 पर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दोस्तों इस सवाल का सही जवाब दिया था खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान ने, पंकज अमरावती बिहार से और मोहम्मद सरफराज आलम ने। सिर्फ 3 लोगों ने सही जवाब दिया था, बाकी लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब दिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia for his 6-day visit. During his visit, Prime Minister Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi today said that India's youth are making their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi added that today, India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted as Yuva Shakti, and that

0: ਗੁੰਮ ਹੈ
1: ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी श्रोतियो, मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे बलजीत शर्मा जी लेके आ रहे ने प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां दे तहत बिरहा दा सुल्तान शिव कुमार बटालवी भाग पहला।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोतियो, 13 जून दिन शनिवार शाम 5:30 बजे हफ्तावारी सिलसिला प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत साडा विशा होवेगा अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: जिसने दर्द नू शब्दां विच रोया
3: की पुछ दे ओ हाल फकीरां दा
2: जिस दी कलम ने इश्क नू अग बनाया
4: एक

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दिया।
1: प्यारे श्रोतियों, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा तो सुनोगे साडे प्यारे प्यारे निक्के श्रोतियां दे लई प्रोग्राम निक्के निक्के तारे। ए प्रोग्राम पेश कीता जावेगा सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल कन्हैया नगर बठिंडा तो, जिस च प्यारे प्यारे विद्यार्थी अपने दिल दियां गल्लां गीत कविता नज़मां तुहाडे नाल सांझा करनगे। बच्चियां दे नाल नाल अध्यापकां दी भी मुलाकातां तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच करवाईयां जाणगियां। सुनना जरूर प्रोग्राम निक्के निक्के तारे, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे।
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
4: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रोशन प्रिंस, तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 MHz ते।
5: स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा 12:39:18 ते जारी है जी प्रोग्राम घर परिवार। ते अज इस प्रोग्राम के तहत है सिलसिला पैणा दी पसंद, जिस तहत असी पैणा नाल खुद जुड़दे हां ते उन्हां नाल करदे हां कुछ गल्लां। ते आओ हुण एक होर पैण साडे नाल जुड़े ने इस प्रोग्राम के तहत, करदे हां उन्हां दे नाल गल। हैलो
6: हैलो
7: हैलो,
6: हां जी नमस्कार जी।
7: नमस्कार मैम,
6: क्या बात है, कहाँ से बोल रहे हो आप?
7: मैं जी बठिंडा से ही बोल रही हूँ, लोकल मॉडल टाउन से।
6: जी स्वागत है प्रोग्राम कर परिवार के तहत।
7: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
6: अपना नाम भी दस दो।
7: हाँ जी, मेरा नाम सविता है।
6: जी जी सविता जी, स्वागत है प्रोग्राम के तहत। ते मैं प्रोग्राम के तहत गल कर रही हूँ कि जिवें कि छुट्टियां का महीना चल रहा है। जी ते जिवें पहला हुंदा सी बच्चियां दे छुट्टियां हुंदियां सी, स्कूल वाले काम उदो भी दिंदे सी पर वो काम मतलब बच्चियां दे लेवल दा हुंदा, यानी कि ये कहना भी पहला छुट्टियां दा काम बच्चियां नूं दित्ता जांदा सी। ते हुण जिवें थोड़ा समा बदल गया है, सिख्या ने भी तरक्की कर लीती है, ते फिर हुण जिहड़ा होलीडेज होमवर्क है ना वह भी थोड़ी जी तरक्की कर गया, यानी कि हुण बच्चियां दे नाल नाल जिहड़े अज दे पेरेंट्स ने उन्हां नूं भी होलीडे होमवर्क पूरा करन दे विच जिहड़ी मशक्कत है ना वह थोड़ी जी करनी पै रही है। मैं बस यही पूछ रही थी भी तुसी घर दे विच जिहड़े बच्चे ने उन्हां दा होलीडे होमवर्क पूरा हो गया या चल रहा है?
7: देखो जी, मेरे बच्चे तो वड्डे ने वैसे
6: जी,
7: पर जदों छोटे सी उदों मैं करवांदी सी उन्हां नूं
6: जी।
7: हुण दा ज्यादातर ए है वी जो भी प्रोजेक्ट वर्क जां आसे पासे असीं देखदे आं लेडीज है ना, हां जी हां, ओह ज्यादा प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट्स जिहड़ियां बच्चियां नूं इधर उधर तों वी मटीरियल उन्हां नूं देखना पैंदा, खाली टेक्सट बुक च उन्हां दा मटीरियल पूरा नहीं हुंदा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ,
6: ਹਾਂਜੀ
7: ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ
6: ਜੀ,
7: ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
6: ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
7: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
6: ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਨਾ।
7: ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ।
6: ਅੱਛਾ

0: डिश है सबका फेवरेट।
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: मिलना भी किस्मत की बात है, बिछड़ना भी एक दस्तूर है। जो दिल में बस जाते हैं उनसे दूर रहना सबसे मुश्किल जरूर है।

0: मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिले मेरा पिंड दौरान तुसी सुनोगे पिंड कोट शमीर जिला बठिंडा दे गेड़े दा भाग दूजा। प्रोग्राम पेश करनगे संदीप शेरगिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना जरूर मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरा पिंड।
1: स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा 12:54 ते 12 सैकेंड का है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण FM 101.1 MHz ते इस वेले प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार। अज इस प्रोग्राम के तहत है सिलसिला भैणा की पसंद जी। ते अज इस सिलसिले के तहत असी कुछ भैणा नाल आप जुड़ते हाँ ते जो तक असी प्रोग्राम के तहत होर भैण नाल जुड़ते हाँ सुनते हाँ प्रोग्राम के तहत यह गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार जी। जी
1: नमस्कार मैम।
0: अपना नाम भी बता दी।
1: माई सेल्फ दीपमाला।
0: जी स्वागत है दीपमाला जी प्रोग्राम कार परिवार के तहत।
1: थैंक यू मैम।
0: जी और आप काम क्या करते हो?
1: आई एम अ साइंस टीचर।
0: जी आप एक साइंस अध्यापिका और बच्चों को पढ़ा रहे हो।
1: हाँ जी मैम।
0: जी वह वो होता ना भी सिख्या ता परोपकारी, यानी सबसे अच्छा काम है बच्चों को शिक्षित करना, और वो काम आप खुद कर रहे हो।
1: जी मैम। जी मैम।
0: जी हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम दे तहत असि ये गल कर रहे हैं अज कि हॉलीडेज चल रही ने, ते बच्चों नु बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिलिया हुआ है।
1: हाँ जी मैम।
0: तहत हाँ जी जरा रिटर्न होमवर्क है वह भी मिले है, तो असाइनमेंट ते मॉडल्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स तुसी कह सकते हो। रिटर्न वर्क तो चलो बच्चे दे पेरेंट्स किसी ना किसी तरीके पूरा करवा ही देंगे, पर कुछ चीजें यह जी होंगे मॉडल्स कह सकते हो है ना तुसी, या प्रोजेक्ट्स जिसे पेरेंट्स भी कई बार इनकैपेबल होंगे कि बच्चा का होमवर्क किवें पूरा करवाया जा सके, खासकर साइंस विषय ही ऐदा है ना। तो तुसी उस दे तहत साडे बच्चों नू कुछ या साडे मापिया नू कोई गाइडेंस देना चाहोगे कि बच्चों का जिहड़ा काम है वह पूरा भी हो जाए, तो बच्चा पेरेंट्स नू ते बच्चों नू कोई ज्यादा तकलीफ है जिहड़ी वह भी ना हो।
1: जी मैम।
0: जी
1: अजकल बच्चे को सोर्स बहुत है, वैसे तो
0: हाँ जी
1: मोबाइल फोन टैबलेट अवेलेबल है,
0: हाँ जी
1: डाटा प्रॉब्लम भी नहीं है, वाईफाई ऑलमोस्ट कवरेज है
0: जी
1: हर एक स्टूडेंट के पास।
0: जी जी
1: मतलब कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे है, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट से चीज करेगा, साइंस सब्जेक्ट को करेगा
0: जी
1: तो बेटर करेगा,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: एक बर्डन की तरह नहीं।
0: जी
1: हम बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं,
0: जी
1: जो बच्चों को बच्चे करते हैं उनको ये नहीं पता कि हम साइंसेस को कैसे जोड़ रहे हैं।
0: हाँ भी हम साइंस से कैसे जुड़ गए।
1: हाँ, बहुत सारी चीजें है, सुबह की रूटीन से लेके रात के सोने तक, मतलब कि ऐसी चीजें वो यूज करता है जो उसके साइंस हर एक सेकंड में है उसकी,
0: जी
1: तो बच्चे उसको गेन नहीं कर पा रहा। कई बार कुछ बच्चे शार्प है जो उस चीज को करते भी हैं,
0: जी
1: ये बच्चे की इंटरेस्ट भी हो जाता है। अगर बच्चे का एक बार इंटरेस्ट बन गया फिर उसको हम गाइड नहीं करेंगे, फिर वो खुद करेगा,
0: जी
1: खुद पूछेगा, खुद मतलब सर्च भी करेगा।
0: जी फिर ये इंटरेस्ट कैसे बनाया जा सकता है?
1: इंटरेस्ट बच्चा देख के, जैसे कि मान लो बच्चा सुबह उठा
0: जी
1: है ना, ब्रशिंग की बच्चे ने, उसमें भी साइंस है, जो ब्रश टूथपेस्ट यूज कर रहा है
0: जी
1: ना, मतलब कि उसका जब सुबह बच्चा उठा उसका माउथ क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है, उसको हम जो टूथपेस्ट यूज किया उसने बेस उसने यूज किया
0: जी,
1: उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया
0: जी
1: अपने माउथ को, है ना।
0: हाँ जी
1: और ऐसे ही हम देखते हैं रोज की जिंदगी में, हर घर में प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग से, पेरेंट्स है या बच्चे हैं बोलते हैं एसिडिक हो गया मेरे को, तेजाब बन गया
0: जी,
1: है ना। बच्चा उस चीज को देख रहा है पर उसे ये नहीं पता कि हम वो बोलते हैं तू जेलोसिन ले ले, दवाई ले ले, है ना, न्यूट्रलाइज, मतलब कि उसको ये पता कि मैं ये टैबलेट या कैप्सूल ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको ये नहीं पता कि वो उस चीज को क्या कर रहा है। एक्चुअली वो जो एसिड उसके अंदर बन गया वो रेटिंग से
0: जी,
1: वो जो भी कंटेंट लेगा साल्ट लेगा उससे वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। ये थोड़ी थोड़ी बात पे वो सोचने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, किस तरह का रूटीन हमारा हो गया है। बच्चा अच्छा, जब हम कहते हैं बच्चे को कि आप एक्सरसाइज

0: वर्कआउट करो, तो उससे क्या हो रहा
1: जी,
0: उसकी मसल्स है, उसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स ओवर लिए वो यूजफुल हो रही है ना, उसके पसीने स्वेट से वो उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली वेस्टेज थी उसकी बॉडी में, या हम ब्रीथ नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें भी बच्चा सोचने लगे है ना, तो उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा
1: जी,
0: है ना। ऐसे घर में सोप वो देख रहा है ना, डिटर्जेंट देख रहा है, अब किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है ना, और अपने हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर है, विनेगर है, है ना, ये सब चीजें बच्चा यूज कर देख रहा है घर में हो रही हैं, अगर वो इंटरेस्ट ले, है ना। आज मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी, हल्का सा टॉपिक है, बच्चे जानते हैं उसको, एसिड बेस एंड साल्ट, तेजाब खार लून, इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखें, घर में कौन सी चीजें है। एक हम कैटेगरी अगर हम ग्रुपिंग की बात करें
1: जी,
0: अगर हम उनको बोलें कि आप अपने घर में जो आइटम्स अवेलेबल है केमिकल्स, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं
1: जी,
0: वैसे अगर हम उनको कहें कि आप एसिड बेस और साल्ट को एक कैटेगरी करो, उनका ग्रुप बनाओ
1: जी,
0: है ना, तो हम बच्चे देख सकते हैं कि वो एक कॉपी पेन पे क्या चीजें लिख रहा है, किनको एसिड में डाल रहा है, किनको बेस में, किनको साल्ट में डाल रहा है वो
1: जी, ऐसे वो थोड़ा थोड़ा साइंस से जुड़ेगा, है ना,
0: थोड़ा थोड़ा जुड़ेगा। जैसे कॉमन साल्ट है, नमक है, है ना, बच्चा उसको नमक बोलता है
1: जी।
0: जो बच्चे सिक्स है ना, फिर सिक्स में आ गए, उनको पता है ये कॉमन साल्ट, इसका फार्मूला NaCl है
1: जी,
0: ना NaCl है, है ना। अगर वो इसको देखे कि ये कैसे कैसे प्रिपेयर हुआ, ये कौन सी साल्ट है, इसमें कौन सा आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, Na प्लस है, Cl माइनस है, आयनाइजेशन होगा अगर हम उसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे, है ना, NaCl को आयनाइजेशन हो जाएगा उसका, है ना, प्लस माइनस चार्ज है उसमें, डिसोसिएट हो जाएगा उसमें, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे कि हम बोले डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हम किसको बोलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर है जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, डिस्टिल्ड वाटर हम टैप वाटर को डिस्टिल्ड वाटर नहीं बोल सकते, कई बार बच्चे सोचते हैं डिस्टिल्ड वाटर हमारा आरओ वाला वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो डिस्टिल्ड नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर वो है जो हमें कॉमनली वेपोरेशन के बाद मिलता है, जैसे कि हम दूध गर्म किया, हमने चाय बनाई, उसके ऊपर हम प्लेट हम कवर कर देते हैं
1: जी,
0: वो जो वाटर इकट्ठा हुआ ना वेपर्स की फॉर्म में, या हम बोले जो बच्चों की जो सिरप आते हैं उसके साथ हमें एक वाटर बोतल छोटी सी मिलती है जिसको हम सोल्यूशन बनाते हैं यूज करते हैं, सही, वो डिस्टिल्ड वाटर है
1: जी,
0: डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर है जिसमें आयन्स नहीं है,
1: ठीक है
0: ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा
1: जी,
0: जो हमारा टैप वाटर है या हमारा बोल दो कि जो आरओ वाला वाटर है
1: जी,
0: ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसमें आयन्स है
1: जी,
0: है ना। बच्चा इन चीजों को देखे, अपनी किचन में देखे भी क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं, एसिड कौन सी है, बेस कौन सी है, साल्ट कौन सी है, साल्ट मैंने एक बता दिया NaCl है, ऐसे बच्चा निकाले उनमें से चीजें, एसिडिक हम एसिडिक चीजें भी ले रहे हैं, ये तो नहीं है कि हम ले नहीं रहे, जैसे कि लेमन है सिट्रिक एसिड है उसमें,
1: हाँ जी,
0: है ना, जो मिल्क हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड है उसमें,
1: हाँ जी,
0: बट इसकी भी कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस है ना, इनको कैटेगराइज हम खुद कर सकते हैं, बच्चे सीखे इसको देखें, थोड़ा सा स्टडी करें
1: जी। मीन्स बात करने की वो ये कि बच्चा पहले चीजों को थोड़ा सा
0: इंटरेस्ट ले,
1: थोड़ी सी साइंस की नॉलेज होगी, फिर उनमें वो दिलचस्पी ले, और फिर वो घर पे छोटे छोटे एक्टिविटीज जड़े है ना
0: इसमें इन्वॉल्व होएगा, जैसे कि हम टर्मरिक पाउडर है मैम, है ना,
1: हाँ जी,
0: टर्मरिक पाउडर है, हल्दी, हल्दी जो है एज ए इंडिकेटर है, अच्छा हमने बोल दिया, मैंने बोला कि एसिड है, बेस है, साल्ट है,
1: हाँ जी,
0: बच्चा बोले तो हमें तो पता ही नहीं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, सूचक जिसे बोलते हैं हम
1: जी,
0: जो हमें बता देगा कि ये चीज हमारे लिए हार्मफुल है, ये चीज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है
1: जी।
0: इसमें सबसे कॉमन जो इंडिकेटर है लिटमस पेपर है
1: जी,
0: बच्चे देखते हैं लैब में, स्कूल में इनको अवेलेबल है ना, लिटमस पेपर हर एक बच्चे ने देखा होता है, लिटमस पेपर दो कलर्स में आते हैं अपने पास, ब्लू और रेड लिटमस पेपर,
1: हाँ जी,
0: देखो इसका अगर बच्चा चाहे, लिटमस पेपर कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, ले सकता, परचेज कर सकता है, उसको देखे, उसको डिप करके देखे, जैसे कि लेमन है,

0: जो अपना जूस है उसको एक नींबू को निचोड़ के उसमें दोनों तरह के लीटर उसे ऊपर डाल के देखिए, डिप करके देखिए मिश्रण में
1: जी। मैम जी आप हमें बहुत सारी नॉलेज दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपके पास बताने के लिए बातें बहुत सारी हैं, बट हमारे पास इतना मतलब समय के मुताबिक हमें जो हमारी बात है वो शायद आज यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। हम किसी प्रोग्राम में आपको जरूर जोड़ेंगे, और इतनी देर हमसे बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम। थैंक
1: जी, वेलकम।
0: माय प्लेजर।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: प्यारे श्रोतियों, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा तो सुनोगे साडे प्यारे प्यारे निक्के श्रोतियां दे लई प्रोग्राम निक्के निक्के तारे। ए प्रोग्राम पेश कीता जावेगा सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल कन्हैया नगर बठिंडा तो, जिस च प्यारे प्यारे विद्यार्थी अपने दिल दियां गल्लां गीत कविता नज़मां तुहाडे नाल सांझा करनगे। बच्चियां दे नाल नाल अध्यापकां दी भी मुलाकातां तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच करवाईयां जाणगियां। सुनना जरूर प्रोग्राम निक्के निक्के तारे, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे।
2: मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिले मेरा पिंड दौरान तुसी सुनोगे पिंड कोट शमीर जिला बठिंडा दे गेड़े दा भाग दूजा। प्रोग्राम पेश करनगे संदीप शेरगिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना जरूर मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरा पिंड।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रोशन प्रिंस, तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते।
4: जी स्रोतियों, स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा है 1:29 का जी, ते प्रोग्राम है हैलो फरमाइश। एक होर श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते ने, करदे उन्हां दे नाल गल। हैलो हैलो
5: हेलो,
4: हां जी सत श्री अकाल जी।
5: सत श्री अकाल जी।
4: जी कौन बोल रहे हो?
5: मलकीत सिंह कन्हैया जी।
6: जी मलकीत जी, स्वागत है प्रोग्राम के तहत।
5: हां जी सत श्री अकाल भैन जी।
6: सत श्री अकाल जी। हां जी सत श्री अकाल जी, दोवे हाथ जोड़ के।
5: हां जी, मैं मलकीत सिंह कन्हैया जी, आ रही नवी बस्ती बठिंडे बोलदा जी, मेरा पिंड कन्हैया जी। मैं 15 दिन तो पहला फोन नहीं लाउंदा जी।
6: जी मेहरबानी तुहाडी।
5: नोट कर लो डेट आई थी, अज मैं भी नोट करूंगा जी नाले।
6: ठीक है।
5: हाँ जी।
6: अच्छा ते गीत केड़ा सुनोगे?
5: मैं जगीर फिल्म सुनना जी, कवाली मन्ना देव जी गाई हुए यारी है मान मेरा जिंदगी बोल आई है
6: जी। ते ए मैंने लगा अमिताभ बच्चन ते प्राण ते पिक्चराइज होया गीत है।
5: हाँ पिक्चराइज, पुरानी पुरानी फिल्म है जी।
6: अमिताभ बच्चन भी है ना इस गीत ची?
5: हाँ जी अमिताभ बच्चन भी है। अमिताभ बच्चन भी
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

मिलना भी किस्मत की बात है, बिछड़ना भी एक दस्तूर है। जो दिल में बस जाते हैं उनसे दूर रहना सबसे मुश्किल जरूर है।

0: एक बार फिर खूबसूरत एहसास लेके मैं विजयलक्ष्मी श्रोत्या दे खिदमत विच हाजिर हुई हां। तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम पैगाम लेके इस बार दा पैगाम प्रोग्राम पेश करांगी मैं विजयलक्ष्मी ते मेरे नाल सतपाल ब्राड जी।
1: क्यों ना ऐसा करे हो मिल जाए चलो हमसे
0: मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला पैगाम तुसी भेज सकदे हो 7173 73 146 ते और प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भुला मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। आकाशवाणी FM बठिंडा दे श्रोतियां नूं दस दी कि मिति 13 जून दिन शनिवार शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम शाम सुहानी दे तहत सिलसिला फिल्मी अफसाने और तरानी। इस बार तुसी सुनोगे फिल्म परदेस दा भाग दूसरा, वाचक अते संपादन कमल सिद्धू, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भुलना तारीख 13 जून दिन शनिवार शाम 7:45 ते सिलसिला फिल्मी अफसाने और तरानी।
2: सत श्री अकाल दोस्तो, मैं हां हरजीत हरमा ते तुसी सुन रहे हो मालवी दी शान ते श्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते।
3: स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा 1:49 ते 36 सेकंड दा। इक होर श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते ने कर दिया उहनां दे नाल
4: गल। हैलो
5: हैलो, नमस्कार मैम।
4: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
5: जी मैं पता नहीं जी, सुशील सिंह खास बोल रहे हैं जी। बहुत समय बाद फोन लगे, समय ही जीत गए।
4: अच्छा, साल बीत गए, कितने साल बीत गए? अच्छा चलो, मेहरबानी तुसी साडे प्रोग्राम सुनदे हो, सारे प्रोग्राम सुनदे हो? परमात्मा दी जी। ते गीत केड़ा सुनोगे?
5: गीत कल तूफान आया तूफान भी जाएगा।
4: बीबिया भेना ने उन्होंने पूछ के देखो भी किन्नी सफाई करनी पैंदी है। रोज रोज ओना ही ज्यादा काम करना औखा है ना। हम तुसी ऐ दुआ करो भी हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चलदी होवे पर नेरी ना आवे।
5: परमात्मा
4: सब ते मेरे पर हाथ रखे, फोन करने लई शुक्रिया। ठीक है जी, ओ भी सुन रहे होंगे प्रोग्राम, उन्होंने तक तुहाडी सत श्री अकाल पहुंच गई होनी
5: जी।
4: थैंक यू।

0: Initiative Beti Bachao Beti Padhao has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Keralam, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच

0: मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल The Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का

0: अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस

0: एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। FM ਬੈਂਡ 101.1 MHz ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ 2:30 ਤੇ 22 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

प्रोग्राम सुरीली दोपहर सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते आदाब। मैं सीमा कटारिया हाजिर हाँ अज का ही प्रोग्राम सुरीली दोपहर लैके से श्रोतियों दसती कि तुसी सानू प्रोग्राम के तहत मैसेज भी कर सकते हो, यानी कि अपने सुनेहे इस वेले भी सानू भेज सकते हो। तो असी तुहाडे वल्लों भेजे हुए खत ते वट्सअप मैसेजेस जिहड़े तुसी सानू भेजे ने उन्हां नू असी प्रोग्राम के तहत शामिल करांगे ते नाल रहेगा बहुत सारा गीत संगीत।

0: जिसने दर्द नू शब्दां विच रोया। जिस दी कलम ने इश्क नू अग बनाया।
1: एक

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे श्रोतियां नूं दस दी कि मिति 13 जून दिन शनिवार शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम शाम सुहानी दे तहत सिलसिला फिल्मी अफसाने और तरानी। इस बार तुसी सुनोगे फिल्म परदेस दा भाग दूसरा। वाचक अते संपादन कमल सिद्धू, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भूलना, तारीख 13 जून दिन शनिवार शाम 7:45 ते सिलसिला फिल्मी अफसाने और तरानी।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा 2:51 का है ते प्रोग्राम दे तहत मैसेज शामिल करन दा जड़ा सिलसिला एक बार फिर तो शुरू कर दें जी। हुन मैसेज साडे कोल पहुंचा है जगा सिंह रामा मंडी, बलजीत कौर रामा मंडी, साडे पोत्रियां तनवीर ते गुरवीर ते जसनूर दी सत श्री अकाल भेजदे हां जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे तहत सानू मैसेज करन लई। ते अगला मैसेज साडे कोल पहुंचा है जी जसविंदर कौर प्रधान मोहल्ला आनंद विहार नेड़े होली एंजल स्कूल मलोड जिला श्री मुक्तसर साहिब तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत सानू मैसेज करन लई। ते अगला मैसेज साडे कोल पहुंचा है सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो। लिखन वाले ने टीटी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह कालका तो, शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत सानू मैसेज करन लई। ते अगला मैसेज साडे कोल पहुंचा है पिंड बुज सिद्धवा नज़दीक मलोड़ तो। लिखण वाले ने सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जंगीर सिंह भुल्लर डब वाली ढाब तो, रुलदू सिंह पिंड करमगढ़ ढाणी तो, मलोट पिंड तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, नमनदीप गिल, गैवी गिल ते आंडी गुआंडी। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत सानू मैसेज करन लई जी। ते अगला मैसेज असीं शामिल करन लगे हां जी, पहुंचा है साडे कोले पिंड लालबाई जिला श्री मुक्तसर साहिब तो। लिखण वाले ने नछत्तर सिंह ढिल्लों, पिंड भगवानगढ़ भुखियां वाले तो बलदेव सिंह, पिंड ढिल्लवां तो सुखदीप गिल, पिंड गिद्दड़बाहे बाबू सिंह ढिल्लों, पिंड लालबाई तो तेजा स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत सानू मैसेज करन लई जी। ते अगला मैसेज असीं शामिल करन लगे हां जी, पहुंचा है साडे कोले सतीश कुमार बंसल, पिंड सावंत खेड़ा नियर मंडी डब वाली तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत सानू इन्ने सारे जड़े व्हाट्सएप मैसेजेस करन लई।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मन चाहेगी मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीस

छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया?
1: फिर
0: पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू, और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूरास्ते फिल्म का गाना।

मियाँ ना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। मुंजे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करनपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के, ये श्रोता हैं समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: को बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत
3: मनचाही
2: मनचाही
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी?
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार, सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।

0: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
1: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
0: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
1: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
0: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
1: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
0: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
1: राजकुमारी,
0: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
1: फिर वही
0: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
1: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
0: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर, इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगे। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: तू कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सकें।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु

0: हाथ आप भी ना बटोर सके।
1: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
0: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
1: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
0: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने यहां तो अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र त्राष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं।
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु

0: गांधारी तो बनी रह सकती हूं, मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं
0: मैं?
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो है स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूं।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व तो स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता। नहीं
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य। असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो देवी। एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या,
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का?
1: पगली कहेगी, क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता? किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

महारानी, एक बार, केवल एक बार। नहीं, देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा मार्ग।

0: था, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश, आंखें कैसी हैं, बहुत मोहक, काश मैं देख सकती। किस पर किया है? किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। पारानी, पारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज ध्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही न रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज,
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा,
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
0: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: بعد باكر ليها.
1: आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली.
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी.
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है.
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली. तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था.
1: जाहिर सी बात है ना.
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है. और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया. लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा. तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई.
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था.
0: आरडी
1: बर्मन साहब का. और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट.
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझ कर, वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए. तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का.
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने.
0: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी. एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी. तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था. आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल. एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से ना निकले. ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था. वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था.

फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत

तंग आया अंतर मालिक को और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी है अंतरमाली जी। और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिखकर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते हैं।

0: थे तो
1: हाँ
0: गाने भी अतरंगी चुनते होंगे
1: बहुत ही
0: इस तरह के, या क्योंकि
1: हाँ
0: अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते कितने, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था,
0: अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोच कर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा फिल्म
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है. सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, मेरा माइंड कि क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे हैं.

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली,
1: नहीं ली
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: फिल्में भी
1: नहीं
0: नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं
1: नहीं
0: किया,
1: किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं,
1: हाँ
0: देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना,
1: हाँ
0: एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह
1: करेक्ट
0: सकते हैं
1: करेक्ट।
0: जिसको।
1: हाँ अंदर से आता
0: इसको
1: है।
0: आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूं। मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूं और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आप अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था। तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी, जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो। और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट। मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही, मतलब अगर आप एक बार, मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके, कैमरा के सामने करें, तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन।

0: ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही, जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में, मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है।
0: छानना पड़ता है, वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है, ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो आप जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंद जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियों के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।

0: एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता
1: कर
0: हुआ
1: रहा
0: नजर
1: था।
0: आता है।
1: हाँ
0: आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है?
1: करेक्ट। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, एक दो तीन चार, ओके। एक दो तीन चार, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है। चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये चार बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो

माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेट

0: हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है। वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे, झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यहाँ झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टेडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है। आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है, और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते
0: करेक्ट
1: हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है जो मैंने नौरा के साथ किया, वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से
1: वो खेल
0: खेल
1: लेते हैं
0: जाते
1: हम लोग।
0: हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं। उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी अपना
0: दिखती है।
1: दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाता है कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही।
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर
0: पाते।
1: है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Abhishek, Ritik, Shahid, all very good. Very good dancers. Ranveer also is very good dancer. Aur bahut mehnat bhi karte hain. So it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जी ने बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनकी संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. Whereas others didn't know how to dance.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: हुणे तुसीं प्रोग्राम गल्लां जो गल तहत सुन रहे सी विशेष प्रोग्राम हर अकाल उस्ताद दे तहत एक विशेष सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास। वाचक अते निर्माता निर्देशक सी श्री बलजीत शर्मा, संपादन सी जी गुरदीप गिल दा। ते हुण सुनदे हां जी आपां कुछ संदेश।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
0: जी दोस्तों, ये सी साडा आज दा प्रोग्राम गल्लां चों गल।

एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन एआईआर ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा ते प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक शाम दे 6:19 ते 50 सैकेंड होए ने। 6:20 मिनट ते रिले करांगे प्रदेशी खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

हौसला बख्शिया। मैं जिक्र करना चाहांगी मेरे अध्यापक मैम चरणजीत कौर जी का, जिन्हां ने मैनू जीवन विच बहुत कुछ सिखाया। जदों मैं छोटी हुंदी सी तां मैनू लगदा सी कि मैनू कुछ नहीं आता, पढ़ाई विच मैं बहुत कमजोर सां। मैं प्राइवेट स्कूल विच हटन तो बाद मैनू लग्या कि मैनू कदे मैथ आवेगा ही नहीं, क्योंकि उत्थे मैनू भाग दे सवाल नहीं आउंदे सन। ते जदों मैं सरकारी स्कूल विच आई तां उस अध्यापक ने मैनू इन्ना हौसला दिता, मैनू इस तरीके नाल सिखाया कि मैं क्लास विच अव्वल आउण लगी। उस दिन तो लैके प्लस टू जमात तक मैं हर साल अपनी जमात विचों पहला स्थान हासिल किया। उस तो बाद मेरे अध्यापक नूं भी बहुत खुशी हुई कि इस बच्चे ने इन्नी मेहनत नाल सिखिया है। उन्होंने स्टेज ते आना अते स्टेज ते बोलन ना भी मैनूं सिखाया। जदों पंजवी जमात विच साडी फेयरवेल पार्टी हुई तां उन्होंने मैनूं कोरियोग्राफी की तैयारी करवाई अते मैं एक गीत भी उस समय स्टेज ते गाया। बेशक उदों मैनूं स्टेज ते चढ़न तो बहुत डर लगदा सी, पर मैम ने कहा कि तुसीं इह कर सकदे हो बच्चे, तुहाडे विच बहुत हौसला है, तुहाडे विच सब कुछ करन दी हिम्मत है, पर एक वार तुहानूं स्टेज ते जरूर जाना चाहीदा है। जी श्रोतियो, अध्यापक दी भूमिका साडी जिंदगी विच बहुत महत्वपूर्ण हुंदी है। एक अध्यापक बच्चे दे अंदर दी शख्सियत नूं निखारदा है, उसदे अंदर छुपे हुए हुनर नूं निखारदा है, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰੋਤਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिले मेरा पिंड दौरान तुसी सुनोगे पिंड कोट शमीर जिला बठिंडा दे गेड़े दा भाग दूजा। प्रोग्राम पेश करनगे संदीप शेरगिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना जरूर मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरा पिंड।
3: पेश है सबका फेवरेट
4: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
5: जिसने दर्द नू शब्दा विच रोया
6: पुछ दे ओ हाल फकीरां दा,
5: जिस दी कलम ने इश्क नू अग बनाया
7: एक

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 14 जून दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।
1: जी श्रोतियो, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत दे विच। स्टूडेंट लाइफ दे विच कॉलेज लाइफ एक अहम रोल अदा करती है। कॉलेज दे पल हमेशा हसीन अते यादगार हुंदे हन, जो कदे भी साडे चेतियां विचों विसरदे नहीं। कॉलेज दे मेरे भी बहुत यादगारी पल हन, जिन्हां नूं मैं सोच के फिर तो जिउणा चाहुंदी हां, पर की करिए वह पल फिर वापस नहीं आते। सब तो हसीन पल मेरे कॉलेज के यूथ फैसटिवल NCC के नाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में NCC भी ज्वाइन की सी। मैं कॉलेज के 3 साल यूथ फैसट में भी पार्टीसपेट किया। मेरा ज़्यादा इंट्रस्ट म्यूजिक विच सी, इसलिए मैं यूथ फैसटिवल ग्रुप सोंग पार्टीसपेट करती रही हाँ।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: मिलना भी किस्मत की बात है, बिछड़ना भी एक दस्तूर है। जो दिल में बस जाते हैं उनसे दूर रहना सबसे मुश्किल जरूर है।

0: जी बिल्कुल श्रोतियों, असीं अपने दोस्तां दे नाल मिलदे वी आं ते विछड़दे वी आं, पर मिल के जुदा होना ते उस तो बाद जो मिलन दी खुशी हुंदी है ना, खूबसूरत एहसास हुंदा है। सो एक बारी फिर खूबसूरत एहसास लेके मैं विजयलक्ष्मी श्रोतियां दी खिदमत विच हाजिर हुई हां। तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम पैगाम लेके इस बार दा पैगाम प्रोग्राम पेश करांगी मैं विजयलक्ष्मी ते मेरे नाल सतपाल ब्राड जी। मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। पैगाम तुसी भेज सकदे हो 7713-7146 ते। और प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भुला, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
1: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस दे कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन।
2: 2 साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: ता हुन बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त। चलो
3: किथे
4: एडमिशन लेन ली। खाता होया एक्टिव।
5: RBI कहंदा है
6: जानकार बनो सुचेत रहो।
7: प्यारे श्रोतियों, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा तो सुनोगे साढ़े प्यारे प्यारे निक्के श्रोतियां दे लई प्रोग्राम निक्के निक्के तारे। ए प्रोग्राम पेश कीता जावेगा सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल कन्हैया नगर बठिंडा तो, जिस च प्यारे प्यारे विद्यार्थी अपने दिल दियां गल्लां गीत कविता नज़मां तुहाडे नाल सांझा करनगे। बच्चियां दे नाल नाल अध्यापकां दी भी मुलाकातां तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच करवाईयां जाणगियां। सुनना जरूर प्रोग्राम निक्के निक्के तारे, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे।
8: जी श्रोतियों, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत दे विच। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करन तो बाद मैं ETT करन बारे सोचिया अते मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम पास कीता अते मैं एक सरकारी संस्था विच ETT लई एडमिशन ले लई। अंत विच मैं अपने नौजवान श्रोतियां नाल एक गल सांझी करना चाहुंदी हां कि तुसी अपने करियर दी चोण करन वेले बहुत ही सोच समझ के करनी है ताकि तुहानू

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव-गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था।

0: माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई ना कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिए।
0: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासन काल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंचता है, आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए है तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का।

0: मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना, उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए, और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं

0: देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस
1: जी
0: टाइम में पावर नहीं आता था। महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाते थे। और फिर उसके बाद बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई। तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में, तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी। वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूं कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहां उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही, ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती है, वो पूरी वो देखते भी हैं।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल।
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा

0: ना, मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखिए, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, लेकिन पाटिल जी इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: कोई एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे, बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी, आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर कि उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजिशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में

0: कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी, ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है।

0: उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए। और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा।
1: सकते।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना

मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी

0: डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
1: देखिए,
0: देखते?
1: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उनपे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। मीडियम वेव 300।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7:45 ਤੇ 6 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी
1: प्रोग्राम शाम सुहानी सुन वाले सारे दोस्तों नू जी आए नू आखते हैं। दोस्तों अज है दिन शनिवार ते शनिवार नू प्रोग्राम दे तहत तुसी सुनदे हो सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने। अज भी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने जो कि आधारित है जी हिंदी फिल्म परदेस। अज तुसी इसका दूसरा भाग सुनोगे ते लैके हाजिर ने कमलप्रीत कौर।

0: हैं। पहले माँ बाप की सुनो, फिर पति की सुनो, फिर बच्चों की सुनो। बिल्कुल नहीं पिएगी तू जहर।
1: माँ तुम बीच में मत बोलो।
0: चुप रह तू, बुत बने खड़े हो तुम। बेटी का तमाशा कर दिया तुम लोगों ने। किशोरी
1: अम्मा
0: लाल, वतन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया गाना गाते फिरते थे ना तुम। भारत की बेटी को, भारत को अमेरिका में बसाना चाहते थे ना तुम। क्या ये बसाया तुमने ये? वाह किशोरी लाल वाह। मैं पूछती हूँ किशोरी लाल, ये जिस सागर की गंगा उस सागर में जाए, जहां सुर संगम ना ताल मिले, उस परदेश भला क्यों जाए?
2: गंगा परदेश जाएगी माँ जी।
1: अब भी कह रहे हो किशोरी लाल? अब भी?
2: हाँ सूरज, अब भी मैं कह रहा हूं। याद है मैंने कहा था कि एक दिन गंगा को मैं अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगा, इस घर से उस घर तक, तुमसे मांग कर, हाथ जोड़कर। आज गंगा मेरी बहू तो बनेगी ही, लेकिन पत्नी राजीव की नहीं, अर्जुन की बनेगी। हाँ, अर्जुन की पत्नी बनेगी।
3: फिर किशोरी लाल हाथ जोड़ के सूरज तो गंगा नू अपनी बहु बनाने लई मिन्नत करदा है, ते कहंदा है कि गंगा अमरीका जरूर जावेगी, वो मेरी बहु जरूर बनेगी, पर पत्नी राजीव दी नहीं, अर्जुन दी बनेगी। फिर सब खुश हो जांदे ने, ते गंगा अर्जुन नू आवाज मारदी है पर उसनू सुनाई नहीं दिंदी। फिर सारे अर्जुन नू इधर उधर लभन लग जांदे ने। अर्जुन बच्चियां दे नाल खेत विच खेड रहा सी। किशोरी अर्जुन नू गले लगा लेंदा है, ते गंगा भज के अपने पिता सूरज दे गल लग जांदी है, ते इत्थे ही ये फिल्म खत्म हुंदी है। सो इस फिल्म नू सुनण तो देखण तो बाद सानू पता लगदा है कि साडी भारतीय सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता किन्नी अमीर है। बेशक साडे कुछ भैण भरा देशां विदेशां दे विच रहिंदे ने, पर उन्हां दे दिलां दी खिच, उन्हां दा प्यार अज वी साडे हिंदुस्तान वल उन्हां नू खिचदा है। साडा भारतीय सभ्याचार बहुत अमीर है। उम्मीद करदी हां तुहानू अज दी इह कहानी फिल्म परदेस बहुत पसंद आई होएगी। धन्यवाद कर दिए साड़ी टैक्निकल टीम दा, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी दा, ते हुण कमल सिद्धू नू दिओ आ गया। धन्यवाद।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਮੀ ਅਫਸਾਨੇ ਔਰ ਤਰਾਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਧਾਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਪਰਦੇਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
3: प्यारे श्रोतियो मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे तुसी आकाशवाणी एफएम बठिंडा तो सुनोगे साडे प्यारे प्यारे निक्के श्रोतियां दे लई प्रोग्राम निक्के निक्के तारे। ए प्रोग्राम पेश कीता जावेगा सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल कन्हैया नगर बठिंडा तो, जिस च प्यारे प्यारे विद्यार्थी अपने दिल दियां गल्लां गीत कविता नज़मां तुहाडे नाल सांझा करनगे। बच्चियां दे नाल नाल अध्यापकां दी भी मुलाकातां तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच करवाईयां जाणगियां। सुनना जरूर प्रोग्राम निक्के निक्के तारे मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 10 बजे।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
4: मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिले मेरा पिंड दौरान तुसी सुनोगे पिंड कोट शमीर जिला बठिंडा दे गेड़े दा भाग दूजा। प्रोग्राम पेश करनगे संदीप शेरगिल निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना जरूर मिति 14 जून दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम सुरीली दोपहर तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरा पिंड।

0: जी बिल्कुल श्रोतियों, असीं अपने दोस्तां दे नाल मिलदे वी आ ते विछड़दे वी आ, पर मिल के जुदा होना ते उस तो बाद जो मिलन दी खुशी हुंदी है ना, खूबसूरत एहसास हुंदा है। सो एक बारी फिर खूबसूरत एहसास लेके मैं विजय लक्ष्मी श्रोतियां दी खिदमत विच हाजिर हुई हां, तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम पैगाम लेके। इस बार दा पैगाम प्रोग्राम पेश करांगी मैं विजय लक्ष्मी ते मेरे नाल सतपाल ब्राड जी। मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। पैगाम तुसी भेज सकदे हो 7173-7146 ते। और प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। सो सुनना ना भुला, मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
1: जी दोस्तों, ये सी साडा अज दा प्रोग्राम शाम सुहानी।

0: प्रोग्राम शाम सुहानी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन EIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक रात दे 8:15 ते 3 सैकेंड होए ने। हुण पेश है जी गज़लां ते आधारित प्रोग्राम रंगे गज़ल। शुरुआत करांगे आपां सब तो पहलां भुपिंदर सिंह ते मिताली सिंह दी आवाज़ां दे विच इस गज़ल दे नाल।

मिलना भी किस्मत की बात है, बिछड़ना भी एक दस्तूर है। जो दिल में बस जाते हैं उनसे दूर रहना सबसे मुश्किल जरूर है।

0: मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला पैगाम पैगाम तुसी भेज सकदे हो 77173 7146 ते और प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी सो सुनना ना भुला मिति 14 जून दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम
1: ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ।

0: मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में

0: उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकृत

0: ग्रहण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा

0: दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert.

0: शरीके जिंदगी होना तेरा एहसान हो गया। ओ यारो अब क्या होगा, यारो अब क्या होगा,
1: वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, खुदा होगा।
0: ओ यारो अब

0: यार अब क्या होगा,
1: वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, खुदा होगा।
0: यारो अब क्या होगा, यारो अब क्या।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ। संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां, वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी। इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहां उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक किया।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

से मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

आपको पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबें जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में, बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में, बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर, कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।